0: நிறைவடைகிறது சிநேகிதியே.
1: அக்கா 100% அடிச்சு சொல்ற, இதுவே யாருமே 100% கொடுத்ததே இல்ல. அதனாலதான் நம்ம SMJ செந்தமரன் ஜுவல்லர்ஸ்ல தங்க நகைகளுக்கு சீதாரத்துல 100% தள்ளுபடி தராங்க.
2: 50% பிளஸ் 50% சீதாரத்தில் தள்ளுபடி. இச்சலுகை June 15 முதல் July 15 வரை மட்டுமே. SMJ செந்தமரன் ஜுவல்லர்ஸ், மேலமாசி வீதி போத்திசரியில், பொன்மேனி பைபாஸ் ரோட் மற்றும் தெற்காவணி மூல வீதி மதுரை.
3: நமஸ்கார், மை ஹூ கைலாஷ் கேர். ஓர் ஆகாஷ்வாணி கே சபி ஸ்ரோதாவோ கோ மேரா பாரம்பார் பிரணாம். ஓர் भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
5: दंभ का स्तंभ खंडम दम त्रिशूल गाड़ के प्रलय का

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह